0: tune in to 98.1 FM Radio Eastern every Thursday, 8 to 9 p.m. for Bollywood Radio program.
1: Hello, Zindagi.
2: ECG ke jaisi. उठती गिरती संभलती है जिंदगी हेलो जिंदगी हेलो जिंदगी के सभी लिसनर्स को मेरा यानी रुचि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सुन रहे हैं रुचि को अ ह्यूमन स्टेइंग हैप्पी कीपिंग द होप अलाइव हू हा हो एंड दैट्स मी भाई स्टूडियो में आज मेलबर्न में जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्रीज है लेकिन अगर इसको गर्मा गर्म करना है तो इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट कर लें आज आपके साथ देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक तो वो होते हैं जो सुबह उठते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग और दूसरे होते हैं कहते हैं कि पहले चाय दो फिर उसके बाद बात करना तो ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है ना कॉफ़ी कल्चर वो हम देसियों ने क्या कर दिया उसको चाय कल्चर बना दिया है सुबह सुबह हमें चाहिए क्या क्वाइटली केटल को ऑन कर दीजिए और उसके बाद देखिए चाय का लुत्फ लीजिए अब चाय किसने की तरह की मतलब मसाला चाय होती है जिंजर चाय होती है कार्डमम टी होती है और ड्रिंक तो नहीं है ये सिर्फ क्या क्या हो सकता है चाय से सोच के बताइए फ्रेंडशिप स्टार्ट करनी हो तो चलो चाय पे मिल लेते हैं स्ट्रेस बस्टर है तो भी चाय है और इंडियन हाउसहोल्ड्स का तो अनऑफिशियल फैमिली मेम्बर जैसे चाय हो जाता है ना आपको याद होगा हमने एक बार मैंने वीना ने और सुमन जी ने एक चाय पे प्रोग्राम किया तो वो प्रोग्राम बहुत हिट हुआ था और मैं सोच रही थी कि इसी तरह का किसी कोई प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि आज 21 मई है इंटरनेशनल टी डे है लेकिन भारत वालों का ये जो चाय का रिश्ता है ये तो बहुत इमोशनल है ही हार्ट ब्रेक हो तो चाय चाहिए ऑफिस में गपशप करनी हो गॉसिप करनी हो किसी के बारे में तो भी बारिश हो तो पकौड़े और चाय और अगर पड़ोसी की न्यूज़ भी लेनी हो तो भी चाय तो लेकिन हम देखिए भारत में तो है नहीं अब तो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो कभी कॉफ़ी पी लेते हैं कभी चाय पी लेते हैं और यहाँ हमारी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी फ्रेंड है बीना शाह उसने स्टार्ट किया अपना चाय का बिजनेस मुंबई कटिंग चाय और उस चाय ने ना धूम मचा दी है बिकॉज जो भी पीता है वो कहता है यार कॉफ़ी को रिप्लेस कर देना चाहिए अब सुबह के समय में मुंबई कटिंग चाय का लुत्फ लेना चाहिए अच्छी बात यह है कि ये जो इनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो भी विक्टोरिया में ही है तो इसलिए मेड इन ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है तो आप में से कोई भी अगर ट्राई करना चाहता है तो हमारी फेसबुक पोस्ट देख सकता है हमने वहाँ थोड़ी डिटेल्स डाली हैं हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज़ वेरियस फ्लेवर्स बट अब एक गाना सुन लेते हैं देखिए ये जो गाना है ना ये है पलक मुचाल का गाया हुआ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ आज ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ चाय को याद करते हुए क्योंकि मैं भी चाय से बहुत प्यार करती हूँ सुनिए

0: वेलकम बैक लिसनर्स. देखिए, हेलो जिंदगी का हमेशा से ये मानना रहा है कि हर नई आवाज़ अपने साथ एक नई सोच, एक नई एनर्जी और नई कहानी लेकर आती है. आपको भी ऐसे ही लगता है ना? और इसीलिए नए लोग, नए टैलेंट और नई वॉइसेस को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है. कहते हैं ना, अगर जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना हो तो अकेले चलते रहो अपनी स्पेस से और पहुंच जाओ, अचीव कर लो. लेकिन अगर दूर तक जाना है, किसी सफ़र को बहुत दूर तक तय करना है, तो किसी साथी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और एक अच्छी टीम जो होती है वो सफ़र को सिर्फ लंबा ही नहीं करती बल्कि उसको इंटरेस्टिंग भी बना देती है. बहुत सारे इंजॉयबल मोमेंट्स भी साथ में आते हैं. अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग आइडियाज़ हमें मिलते रहते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, उनका अपना एक स्टाइल होता है जिसे वो लेकर आते हैं और टीम के साथ जुड़ जाते हैं. और इसी से, डाइवर्सिटी से जो मोनोटनी होती है वो ब्रेक होती है. तो हमें लगता है कि हमारे जो हेलो जिंदगी के लिसनर्स हैं उनका भी पूरा हक बनता है भाई नए नए जो मेलबर्न में टैलेंट्स हैं उनसे मिलने का, उनसे रूबरू करने का, उनकी आवाज़ को सुनने का, उनकी बातों को सुनने का. तो और रेडियो का जो माध्यम होता है, ये जो दुनिया होती है, इसमें तो सारा खेल ही आवाज़ का होता है. आप मानते हैं ना इस बात को? क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ऐसा हो जाता है. किसी का अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, किसी की वॉर्म्थ होती है, किसी का एक एनर्जी होती है, सिंप्लिसिटी होती है. और लिसनर्स को इस तरह के जो चेंज हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा हमें लगता है ना? तो इसी खूबसूरत सी अपनी सोच के साथ हेलो जिंदगी की जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है, हमने सोचा, क्योंकि हमें लगा मेलबर्न में थोड़े से और टैलेंटेड लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, रेडियो की जिंदगी जो है, दुनिया है, इसमें अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं. और हम सब ने ये डिसाइड किया कि यस, हमें ऐसे लोगों को एक मौका भी देना चाहिए और अपनी टीम को ग्रो करना चाहिए. तो इसीलिए हमारे साथ विशाल भारद्वाज, तो आप सुनते आए हैं पिछले कुछ समय से, कुछ हफ्तों से वो हमारे शो के साथ जुड़ चुके हैं. बट एक और खूबसूरत आवाज़ है जिसको कि जिसने कि एग्री किया है हमारे साथ जुड़ने का. तो हम स्वागत करते हैं आशिता शर्मा का, जिसको कि हम प्यार से कहते हैं ऐश. और हमें पूरा यकीन है कि ये जो नई आवाज़ आप सुनेंगे ना, वो आपके दिलों में पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट लेकर ज़रूर आएगी. तो लेट्स वेलकम ऐश ऑन आवर शो. हेलो आशिता, हाउ आर यू?
1: नमस्ते मेलबर्न, एंड थैंक यू सो मच रुचि फॉर द हार्ट वार्मिंग इंट्रोडक्शन. सच कहूँ तो माइक के इस तरफ बैठना मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है. लाइफ में कभी कभी हम बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, डॉटर होने का, मदर होने का, प्रोफेशनल होने का और एक दोस्त होने का. लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी अपनी असली आवाज़ थोड़ी सी पीछे रह जाती है. एंड शायद मेरे लिए हेलो ज़िंदगी वही जगह है जहाँ मैं अपनी आवाज़ से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहती हूँ. एंड आई एम रियली एक्साइटेड दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द हेलो ज़िंदगी फैमिली. एंड थैंक यू सो मच कि मुझे ये मौका दिया मेरे अपने अंदर जुड़ने के लिए.
0: द हेलो जिंदगी टीम इज डिलाइटेड टू हैव यू विद अस. सो दिस इज रियली गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी, बिकॉज जिंदगी रुकती नहीं है, बदलती रहती है और हर सफर कुछ ना कुछ सिखा ही देता है. इसी खूबसूरत एहसास के साथ लेट्स लिसन टू द सॉन्ग विच इज ऐश फेवरेट सॉन्ग, एंड शी इज द वन हु हैज सजेस्टेड अस टू प्ले दिस सॉन्ग. एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टू सच मॉर्निंग्स इट हैज हैपन व्हेन we don't want to wake up sometimes, you know.
1: Yes.
0: Yeah, the mornings are not that excited, but this is a song which can actually make you leave your bed with positivity.
1: 100%.
0: Because ye movie Dear Zindagi ka song hai, jisme ki bahut acha si baat jo Shahrukh Khan ne boli thi, agar sab maan sake us baat ko ki life ko na uski imperfections ke sath bhi accept karna chahiye.
1: Bilkul.
0: Aur wo usme kehte hain ki let's your past not blackmail your present to ruin your future.
1: Wow, beautiful you said.
0: Let's love you, Zindagi.
1: Yes.
0: Let's listen to this song.

0: स्वागत है हमारे श्रोताओं का हेलो जिंदगी के शो में, जो कि हम रन करते हैं क्रॉयडन के रेडियो ईस्टर 98.1 एफएम के स्टूडियो से। और आज आपकी होस्ट रुचि शर्मा के साथ आपकी फ्यूचर होस्ट ऐश ढिल्लन, या फिर ऐश शर्मा, जो भी ऐश को पसंद आए, वो बैठी हैं यहाँ पर। तो ऐश, आप इंडिया से मेलबर्न कब आईं?
1: मुझे यहाँ आए हुए अभी 8 साल ही हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली इट मेलबर्न फील्स लाइक होम टू मी। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी वेलकमिंग हैं और ग्राउंडेड भी हैं एंड इंक्लूसिव हैं, और शायद इसीलिए मुझे हेलो ज़िंदगी का विजन इतना पसंद आया। मेरे लिए एसिमिलेशन का मतलब सिर्फ एडजस्ट करना नहीं है, एसिमिलेशन मीन्स ओपनली कल्चर को प्यार, अपने कल्चर को प्यार से शेयर करना और दूसरों के कल्चर को क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ समझना। और यही जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और आपने मुझे बताया कि हेलो ज़िंदगी क्या है, तो दिस इज़ समथिंग विच आई कनेक्टेड विथ, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बट ट्रूली एक एफर्ट करना कि सारे डिफरेंट कल्चर्स इतने अच्छी तरह से एसिमिलेट हों, एक दूसरे से सीखें, वो जो चीज़ है दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी अलॉट टू हेलो ज़िंदगी।
0: That's what is beauty of Victoria and Australia.
1: Yes, exactly.
0: It's a multiculturalism where everyone is given equal respect.
1: Yes.
0: You have the full freedom to enjoy your culture.
1: True.
0: And still being a part of with others.
1: Yes.
0: So that is beautiful here. And speaking of doing things beautifully, I noticed something striking about you. I knew when I was away to India for a couple of days, that time you did mention to me that you are planning to get your head shaved, and I'm meeting you, seeing you in person after that.
1: Yes.
0: So you are looking absolutely amazing. परसिस खंबाटा की याद आती है मुझे, लेकिन ये बताओ कि इतना बड़ा डिसीजन लिया कैसे ऐश तुमने?
1: एक्चुअली ये जो है, आई रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शेव। दिस वाज एक्चुअली माय एफर्ट टू यू नो रेज फंड्स और टू जनरेट लाइक क्रिएट अवेयरनेस ल्यूकेमिया फाउंडेशन के लिए। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था मेरा, इट वॉजेंट एन ईजी डिसीजन, जो बेस्ट पार्ट था वो था कि जब मुझे पता चला कि आई कैन एक्चुअली डोनेट माई हेयर और यू नो इट विल बी यूज्ड किसी के लिए, एक विग बन जाएगी एंड किसी के काम आएगा, वेयर समबडी हु रियली नीड्स दैट। एंड आई कुड हैव चोजन, एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू नो शेव क्यों कराना है, सिर्फ काट ही लो, डोनेट तो कटे हुए बाल भी हो सकते हैं। मैंने कहा वो तो है लेकिन वो ईजी है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर डिफिकल्ट बिकॉज आई कुड टेल माई सेल्फ कि मेरे पास तो एक चॉइस है। देर आर पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, एंड स्पेशली पीपल दोज हु आर गोइंग थ्रू यू नो कैंसर एंड थिंग्स लाइक दैट, जब उनको कीमोथेरेपी कराना पड़ता है, दे डोंट हैव अ चॉइस। सो आई वॉन्टेड टू फील दैट माई सेल्फ, एंड दैट्स वाई आई टुक you know such a big decision.
0: It's a courageous decision. I mean, anyone thinking of, I when I'm looking at you, I'm admiring you
1: for your
0: courage as well as your looks.
1: Oh, thank you.
0: So I don't know if everyone else can also look that strikingly smart, but the courage, I mean, to make yourself convinced to do something like this.
1: Yeah, thank you.
0: Was it hard with the family, with your kids?
1: Yes, it was. My children were really, really scared. My daughter said that she won't be talking to me because she thought that what if, and even I was scared because, you know, in a corporate job, wondering how will I look and how will I appear. And I think it was also a good reminder, kyunki kai baar, especially you know as a woman, hum log apni identity ko apne baalon se connect karte hain,
0: to
1: beauty se connect karte hain baalon ke, you know, if I don't have, agar mera, you know how we say like I'm having a bad hair day,
0: tumne to shampoo ka kharcha, matlab time jitna lagta hai, thand lagti hai, wo blow karo, ye karo, tumne sare pange hata
1: hai, bahut easy ho gaya abhi,
0: life easy ho gaya.
1: Yeah, and I don't
0: shower and ready to go to
1: 100%, kuch nahi karna
0: padega, think what they want to, but you
1: yes.
0: made your choice.
1: Yes,
0: it's beautiful. तो एक बात और बताओ कि चॉइस तो टफ थी जो तुमने बोला, है ना, इट वाज नेवर इजी टू डू दैट,
1: यस,
0: बट जो जैसे बच्चों के बारे में पूछा, घर में बच्चे हैं, ये सब है, बच्चों के बारे में तो तुमने हमें बताया नहीं है अभी तक, फैमिली बैक इन इंडिया के बारे में बहुत बताया, बच्चों के बारे में बताना चाहोगी?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक बेटा है 22 साल का और बेटी है 19 साल की, एंड माई डॉटर इज ऑल्सो type 1 डायबिटिक। शी गॉट, अनफॉर्चुनेटली she was diagnosed when she was just 4 years old. तो अभी उसको 15 साल हो गए हैं, you know, उस बीमारी के साथ, but जो courage उसमें मैंने देखा है जब वो 8 साल की थी तब से वो खुद को इंजेक्ट करना सीख गई थी लाइक द थॉट ऑफ इवन होल्डिंग एन इंजेक्शन इन योर हैंड एज अ 8 ईयर ओल्ड तो आई हैव सीन दैट एंड शी इज आल्सो डन रियली वेल पढ़ाई में काफी फोकस्ड है कमिटेड है तो
0: व्हिच
1: इज अमेजिंग So,
0: to worry then.
1: Yes.
0: Yeah, and you were telling me that you arrived here in Australia 8 years back. So
1: yes.
0: If I calculate, this means your son must have been 14 years.
1: Yes.
0: When he came here and daughter 11.
1: Yes.
0: So was it hard for kids to assimilate in this culture? Because they must have felt that kind of huge difference.
1: Yes, there was a massive difference, especially when you uproot yourself, you know, from your own country and... उस एज में आके आप थोड़े से यू नो आपका आधा बचपन तो निकल ही गया
0: यस
1: टीनेज या एग्जैक्टली तो फॉर माय सन आई थिंक इट वाज मोर डिफिकल्ट बिकॉज जब वो आया तो ही वेंट इनटू ही डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू प्राइमरी स्कूल डायरेक्टली इनटू सेकेंडरी एंड वहाँ पे बहुत इट वाजंट इजी फॉर हिम बट फॉर माय डॉटर बिकॉज शी स्टार्टेड ए प्राइमरी उसका एसिमिलेशन थोड़ा इजियर था एज कम्पेयर टू माय सन बट ही डिड हैव यू नो ऑल दीज चैलेंजेस और बॉयज का ये होता है कि दे डोंट रियली बताते नहीं है घर पे चीज़ें बोलते नहीं हैं बट येस यू नो इट वाजंट रियली ईजी Of course, both of them are very Aussie in their, you know, thought process and in everything. And they, for them, Melbourne is home. But उस समय पे बहुत मुश्किल था. कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आप lost हो जाते हो. आपको समझ में नहीं आता कि आप, you know, Indian हो कि Australian हो. तो वो confusion थोड़े time तक तो definitely बना रहता है. And yeah, but now I don't think they can live anywhere else. They love being here.
0: Good, good. So good to know about that. So let's now listen to a song because of the courage which you have shown by shaving your head.
1: Oh.
0: There is a beautiful song from Tare Zameen Pe.
1: Yes.
0: Movie to Darshil Safari ki thi. Chota bachcha tha wo usme. Kaise usko dyslexia tha.
1: Yeah.
0: He has been feeling. But this song, I think, goes with all of us.
1: Yes, 100%.
0: Let's listen to this song.
1: Yes.

0: वेलकम बैक लिसनर्स. हाँ, वंस अगेन स्वागत है आपका हेलो जिंदगी शो के रेडियो स्टेशन 98.1 एफएम पे. हमारा जो शो आता है उसमें आपका, और आज मैं आपके जो शो के फ्यूचर होस्ट हैं ऐश ढिल्लन के साथ बैठी हुई हूँ यहाँ. और हमारी टॉक्स जो हैं, दिस इज़ वेरी डीपली रिफ्लेक्टिव. शी इज़ बिन टॉकिंग अबाउट हर जर्नी, हर हेरिटेज, हर एसिमिलेशन इन दिस कंट्री, हर इनर करेज टू शेप हर हियर. एंड नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक मोर अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड होप, विच शी वॉज सेइंग इज हर डे टू डे लाइफ थीम. सो ऐश.
1: Yes, it's my day-to-day life's theme, and I would say that it is something which I think a lot of us can connect with, you know, acceptance. When I look around and see, as you must have also noticed, Ruchi, ke aajkal jo relationships hain, wo kuch bahut zyada nazuk hoti ja rahi hain, and they are breaking more than ever. And jo zindagi hai, you know, it throws unexpected storms at us. We face heartbreaks, separations and challenges as a parent, as a partner. But I feel like what I have learned is that trying to change others is never the solution. Acceptance is the ultimate key, whether it is accepting a different culture, accepting a changing relationship, or accepting a difficult reality. When we accept situations and people without judgment, we stop breaking. And that true insight comes from changing our own perspective.
0: It's very philosophical. Very
1: yes.
0: philosophical. And that's a philosophy if each of us is able to actually imbibe in our life and understand it fully. And because acceptance is the biggest virtue.
1: Exactly.
0: It reduces all your pain if
1: yes.
0: you come and agree with the situation.
1: True.
0: Just do your best and just leave the result
1: yes.
0: to your destiny.
1: True.
0: Yeah. So yeah. that is beautiful, incredibly profound. And you mentioned about your passion of writing. We just was talking about it.
1: Yes, yes,
0: so
1: yes.
0: So do you have something for our listeners to listen today? Something which you have penned by yourself?
1: Yes, I have something which I've brought here tonight to the studios, and I wrote it back in 2023 during a very vulnerable phase, you know, in my life, sitting with the uncertainties of time and relationships. And I haven't shared it before, but I think tonight feels right to read it out to our listeners.
0: Please do.
1: Yes, I am going to read it out though. Mm-hmm. ये जिंदगी ना तेरी और ना मेरी, ये जिंदगी ना तेरी और ना मेरी, फिर क्यों धूप छाँव की हेरा फेरी, ना मंजिल का पता ना रास्तों की खबर, ये सांसें जो हैं आज और अभी, ये ना तेरी ना मेरी. बेजान सी जिंदगी में जान डाल दे, बेजान सी जिंदगी में जान डाल दे, साथ जो है उसमें जज्बात डाल दे. वक्त दर वक्त कुछ कम हो रहा है, वक्त दर वक्त कुछ कम हो रहा है, उस कम होते हुए लम्हे में थोड़ी सी जान डाल दे. ढूंढ रही हूँ उस एहसास को जो शायद शब्दों में बयां न हो, ढूंढ रही हूँ उस एहसास को जो शायद शब्दों में बयां न हो, बस उस तलाश में झूठी ही सही थोड़ी सी उम्मीद फिलहाल डाल दे. बिखर रही हूँ हर पल हर दम, बिखर रही हूँ हर पल हर दम, इस नाइंसाफ़ी में एक टुकड़ा इंसाफ डाल दे. ना जीत तेरी मेरी ना हार तेरी, इस अहंकार पर प्यार की बौछार डाल दे.
0: बहुत ही खूबसूरत कविता तुमने बोली है, अपने दिल के पूरे उद्गार जो तुमने व्यक्त कर दिए हैं, इतनी गहराई है इन शब्दों में. पता नहीं इतनी शुद्ध हिंदी, मतलब कभी कभी लगता है लोगों को थोड़ा समय लग जाता है समझने में. तो ये पोएम हमें दे देना, हम अपने उस पे हेलो जिंदगी के पेज पे इसको शेयर करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: यू फील ऑल राइट?
1: यस यस.
0: सो दैट पीपल कैन एक्चुअली रीड एंड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर वर्ड्स व्हाट यू हैव शेयर्ड विद अस. थैंक यू सो मच. और ये जो तुमने वर्ड बोला, इस ना इंसाफी में एक टुकड़ा इंसाफ डाल दे.
1: Yeah.
0: हाँ, लगता है जिंदगी बड़ी वो रही है, बेवफा रही है तुम्हारी.
1: थोड़ी सी
0: है. कोई बात नहीं अच्छे हेलो जिंदगी में आ गए हो तुम हमारे साथ बस समझो जिंदगी बनेगी हम सब की एक साथ
1: बिल्कुल
0: इनक्रेडिबल थी वो रॉ थी तुम्हारे अपने जितने डीप इमोशंस थे तुमने उसको इतने खूबसूरती से लिखा है सो थैंक यू सो मच ऐश फॉर ओपनिंग योर हार्ट टू अस ऑन योर वेरी फर्स्ट शो इन अ वे do you want to share about your journey of because you are soon to be accredited presenter here with the Radio Eastern 98.1 FM how do you feel about it and would you like to share your journey with our listeners because there could be some more people who are interested to join our team I don't know I'm always you know encouraging others to come join us but maybe through your experiences they can make up their mind whether to go ahead or not
1: Okay, I want to tell everyone who is thinking of doing it. To be honest, Ruchi, if you did not encourage me, you know, I don't think mujh mein itni himmat thi ye karne ke liye. And it's not easy. Pura, you know, I've gone through like training and there's been Graham Laurie, who is an amazing trainer.
0: He's the one who trained us as well.
1: Yeah, he's very good. And then I come and watch Murray's show as well. And maine observe kiya hai ki everybody again, you know, it's a very inclusive.
0: He's amazing too, yes.
1: Yeah, he's amazing. And everybody is very welcoming. And because I feel really, you know, I feel that I'm not being judged.

0: पड़ेगी,
1: मेहनत के बिना,
0: मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता,
1: तभी मिलेगा.
0: एग्जैक्टली,
1: ये सही कह रही हो तुम. तो एक और गाना सुनते हैं, है तो थोड़ा सा मतलब हमको तो यारा तेरी यारी
0: वाओ जान से प्यारी.
1: सुने क्या?
0: बिल्कुल, थोड़ा चेंज हो जाएगा.